पीपल तबले पर फजल अबाद छपा लाहौर, ढोलक पर जनाब काशी बाबू जी, फख्र पाकिस्तान खान शिफाउल्लाह खान रोटी, बिस्मिल्लाह।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

उम्मीद है कि दोस्तों को पसंद आया। हूँ प्रोग्राम टाइम खत्म हो गया। जितने दोस्तों ने साड़ा साथ दिया सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो थोड़ा अपने लिंक है मैं जरूर ज्वाइन करो। तो हूँ इजाजत के साथ अल्लाह सोने वाले दुआ याद रखे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तो आखिरी सब दोस्तों से सुनो।

0: की खातिर मर गया राजा, छोड़ के तख्त हजारा।
1: So what?
0: और हीर तो फिर दी शॉपिंग कर दी।
1: Big deal, dude.
0: हीर तो फिर दी शॉपिंग कर दी, दिन भर सेक्टर सतारा भाई, दिन भर सेक्टर सतारा।
1: ओ मैन,
2: मैनू नी चाहिदा कोई राजा।
1: चल झूठी
2: नारा छे दी यारी, वीरे मैनू ते चढ़िया चा फैशन दा।
1: हाय चुकला रब्बा, मैनू
2: मैनू ते चढ़िया चा फैशन दा।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेकअवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

वेलकम बैक, खुश आमदेद तमाम सुनने वालों को। ये बताते चलें कि ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड होता है और हो सकता है कि आप कॉल कर रहे हों, टेक्स्ट कर रहे हों, तो इस वक्त आपकी और मेरी बात नहीं हो सकती। तो कोशिश किया करें कि अगर कहीं भी अगर आपको कोई ख़ास कलाम सुनना है तो आप मैसेज कर दिया करें, ताकि वो हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके लिए शामिल कर लेंगे जब हम दोबारा रिकॉर्ड करवाएंगे। ब्रेक के बाद अब चलते हैं, सिलसिला जारी रखते हैं और चलते हैं अगली कवाली की तरफ।

कवालियाँ अक्सर बहुत ही खूबसूरत होती हैं और बड़ा ही बड़े इनमें एक मैसेज होता है, तो आज भी मैंने आपने ये कवाली सुनी और इसके बाद आपके लिए एक और कवाली पेश करते हैं, ये सुनिए। और हमेशा की तरह ये भी शायद इतनी ही लंबी होगी कवाली और ये हो सकता है कि हमें कमर्शियल ब्रेक की तरफ ले जाए, अगर ना भी हुआ तो हमारी मुलाकात अब ब्रेक के बाद ही होगी।

0: is yet to come. As long
1: keep
0: as
1: listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
2: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5,000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई हैं और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राबता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations।
3: Linking communities, thinking positive. This is Link FM.

0: के शहर शेफील्ड में अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। स्काई एजुकेशन पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड में उन तमाम लोगों के लिए बीटेक लेवल 2 फॉर रोल ऑफ प्रोफेशनल टैक्सी एंड प्राइवेट हायर ड्राइवर जो शेफील्ड या रोदरम में टैक्सी चलाने के ख्वाहिशमंद हो। सिर्फ 2 दिन का कोर्स और टेस्ट। अपना कोर्स आज ही बुक करने के लिए 07507500507 पर राबिता करें या पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर से भी राबिता कर सकते हैं। Sky Education, taking you to reach the sky.
1: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
12: And the winner is
13: And the winner is
12: Your Business

0: लिंक एफएम
1: मिनहाजुल्कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीमुशान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बादस नमाज जोहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीमुशान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से कुलूब व अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।
2: तो सबका है।

0: Would you like to gain experience whilst building up your CV? Link FM is looking for admin workers, graphic designers, researchers, producers, editors and presenters. Do you think you have an idea? Contact the office on 0114 261 8182.
1: मिनहाज कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीम शान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बादज नमाज जोहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीम शान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से कुलूब व अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।

0: music, community, conversation, and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week.
1: This is Link FM. Link FM.
2: बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या

0: If you're looking to promote your business on Link FM, call our sales team now on 0114 261 8182 or email info@linkfm.org.
1: मिनहाज उल कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीम शान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बादस नमाज़े ज़ोहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीम शान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से कुलूबो अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।
0: Our voice, our choice, our radio station, Sheffield's Link FM.

0: name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
1: My name is Shireen. My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम।

दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ। लिंक FM शेफील्ड।

0: Listen live online at linkfm.org. Link FM.
1: मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीम शान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बादस नमाज जोहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीम शान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से कुलूब व अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।
2: The latest updates from your local community, Sheffield's very own community radio station, Sheffield's Link FM.

0: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
1: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824।
2: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
3: And the winner is
4: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849339.
6: Sheffield's very own community radio station.
7: Link FM.
8: My name is Shireen.
9: My name is Abdul Rahman.
10: My name is Sai Mudassir.
11: This is Rahul.
12: My name is Rizwan Ishwak.
13: My name is Asham.
14: My name is Azan Mudassir.
15: This is Ariba and you are listening to Link FM.
6: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
7: Link FM.
16: Music, community, conversation, and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7 days.

0: From the heart of the city, this is Link FM.
1: मिनहाज उल कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीम शान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बादज नमाज जोहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीम शान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से कुलूब अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.

0: at the heart of the city. You're listening to Link FM.
1: Link FM.
2: मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीम शान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बादस नमाज जोहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीम शान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से कुलूब व अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।

धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम।

0: news, health, sport, educational programmes and much more, only on Link FM.
1: मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीमुशान और रूह परवर सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बादस नमाज जोहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीमुशान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से कुलूबो अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक रशीद।
3: मैं औरंगजेब चौधरी।
4: मैं असलम भुट्टा।
5: मैं जी हुसैन कपूर शेफील्ड से।
6: मेरा नाम शफाक हुसैन कियानी है।
7: मेरा नाम अहमद अस्करा।
8: मैं अरशद खान शेफील्ड से हूं।
9: मेरा नाम अंजुम अफ्ताब है।
10: मेरा नाम इमराना है। कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7।
11: नेस्कैफे बेसमेंट सीजन 5 जागने।

0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ,
1: लिंक एफएम शेफील्ड।
2: On 96.7 and around the world online, this is Link FM.

0: The voice of the communities, 96.7 Link FM.
1: Link FM.
2: मिनहाज उल कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीम शान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बादज नमाज जोहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीम शान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से कुलूब व अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।
0: योर नंबर वन फॉर न्यूज़ इन शेफील्ड, लिंक एफएम।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saeed Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saeed Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: जिन्होंने मजेदार खाने ना कोई जवाब ही नहीं, एक बारी अजमाई के तको। शादी ब्याह, सालगिरह, माणिया, मेहंदी और दिगर तकरीबात आस्तै इस महंगाई ने दौर विच सस्ता ते मजेदार खाना आर्डर पर बनवाई सकने हो। एक और भी गल बुझो, खान कैटरिंग राधन वाले पूरे साउथ यॉर्कशायर विच कैटरिंग नी डिलीवरी भी करने। आर्डर निका होया या बड़ा, ऑलवेज वेलकम। खाने ने आर्डर वास्ते भाई इफ्तिखार की फोन करो या व्हाट्सएप पर राबता करो 07931737547
1: या 07784850934।
2: Do you ever find yourself lonely or isolated, or there are issues at home like finance or housing related? Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11am till 2pm. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your Epic Link worker encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074-439-54378. That's 074-439-54378.
3: On 96.7 and around the world online, this is Link FM.
4: मिनहाज उल कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीम शान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बादज नमाज जोहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीम शान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से कुलूब व अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।
5: And the winner is.
6: And the winner is.
7: And the winner is.
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम।

0: You are listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: Lazier Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchases of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, naziersolicitors.co.uk. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Sending money home? Make it a breeze with Remit Choice. Say goodbye to fees and hello to the best rates. Speedy transfers, no matter the destination. Trust in Remit Choice for seamless security. Your money, our commitment, every single transaction. Get ready for a revolution in remittances. Download the app now and let's make money sending a joy.
5: To make a difference in your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
6: परेशान खड़ते हुए जी
7: अंकल, मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है, कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं?
6: ये तो कोई फिक्र वाली गल नहीं, ऐ साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना, ये एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने, कार वे या वैन रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने, खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस।
7: एएमओटी वाले हैं किधर?
8: एएमओटी क्ले स्ट्रीट अटरक्लिफ S92PE। अपॉइंटमेंट नहीं, कोई जरूरत नहीं, अच्छो एमओटी गड्डी नहीं कराओ ते मौजा करो। फोन नंबर 0786-786-2585.
9: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxiing Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay, call 07456-848-368. That's 07456-848-368. 368 or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
10: Your sacrifice.
11: Sheffield's Link FM.

0: This is Link FM.
1: मिनहाज कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीम शान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बाद नमाज जोहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीम शान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से उलूब अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।
2: From the heart of the city, this is

दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ, लिंक एफएम शेफील्ड।

0: If you're looking to promote your business on Link FM, call our sales team now on 0114 261 8182 or email info@linkfm.org.
1: मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीम शान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बादस नमाज जोहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीम शान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से कुलूब व अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।

0: can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire, online and on DAB.
1: Coke Studio, Season 15.
2: You are listening to Link FM.
3: मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीमुशान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बाद नमाज़े ज़ुहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीमुशान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से उलूबो अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।
4: If you would like to promote your business on our radio station, contact on 0114 261 8182 or email us on info@linkfm.org.
5: Hello?
6: Hey, hi. Did you find out?
5: I did. लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये तुम क्यों करना चाह रहे हो? She's moved on. Big deal. I think you should as well.
6: Please. कब मिल रहे हैं?
5: आज रात, around 8.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM

0: अनिल दहुन और जया बहादरी, उसके बाद बच्चन बहादरी थी, ये उनके बहुत ही प्यारी और खूबसूरत फिल्म थी। इफ़त जी,
1: जी जी,
0: मैं स्क्रीन पर नजर डाल रहा हूँ, मुझे स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक नजर आ रही है, ये क्या हुआ? फेसबुक
1: जी
0: का
1: वो, मैं यही मैं अभी बताने वाली थी आपको कि हमारे प्रोड्यूसर साहब जनाब जवादन जुआ का जो है वो हमें मैसेज आया कि आज जो है ये अनफॉर्चुनेटली, माजरत के साथ, कि हमारा व्हाट्सएप और जो है ये फेसबुक की जो है ये स्ट्रीमिंग आज काम नहीं कर रही, तो आपसे बहुत बहुत माजरत। आप स्टूडियोज में आके हमसे अपने मैसेजेस हमें दे सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। स्टूडियोज़ का नंबर है 0114-261-8181 पर आप हमें कॉल कीजिए, और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेजेस दीजिए, लेकिन व्हाट्सएप आज हमारा कुछ काम
0: फ़ोन आप उस वक्त कीजिए जब कोई गाना प्ले हो रहा हो, तब मैं हम आपकी फ़ोन कॉल उठा सकते हैं। और जवाब जैसा जनजुआ साहब मेरे ख्याल में ये काफ़ी बिजी रहे हैं ये ईद के मौके पर, और कुर्बानियाँ का क्या ये वही स्टीम वगैरह गोश्त वगैरह खा का उनको सुस्ती
1: उसको तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने तो गोश्त नहीं खाया, ये तो टेक्नोलॉजी तो अपनी जगह है जी इस पर तो मेरे नहीं ख्याल में कुर्बानी का कोई असर हुआ होगा।
0: मौसम बहुत गर्म है,
1: मौसम गर्म है, मौसम को आप ब्लेम दे सकते हैं जी,
0: उसी का असर
1: होगा, कुड बी, यस पॉसिबल है इसमें जी। हम समय कोशिश कीजिए कि अपनी उदासियों को दूर करें, खासतौर पर इन दो घंटों में, तो आप कम अज़ कम जो है ना आपको हम उदास नहीं होने देंगे। वैसे भी कहते हैं कि जब दिल उदास हो तो उसका रद्द अमल जो है ना वो दूसरों पर आप मत जाहिर होने दें कि आपका दिल उदास है, बल्कि दिल की उदासी को दिल की गहराइयों में छुपा कर दूसरों के साथ हंसी खुशी आप वक्त गुजारें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी उदासी से किसी का दिल दुखे और अपने आंसुओं को छुपाकर, अपने दिल की उदासी को दबाकर, अपने हाल को किसी दूसरे पर जाहिर किए बगैर आपको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी गुजारें। अच्छा है, क्योंकि लोग आपको देखेंगे, उदास देखेंगे, तो कोई आपके आंसू, बहुत कम लोग हैं जो आपके आंसू पहुँचें, ठीक है? तो दिल रो रहा हो तब भी होंठों पर आप मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि ये खुद गर्ज दुनिया जो है ये हंसने में तो आपका साथ दे सकती है, लेकिन रोते हुओं का साथ रोकर कभी भी नहीं देती। इसलिए होंठों पर मुस्कुराहट सजाए रखिए, चाहे वो झूठी ही सही।
0: जब भी ये दिल उदास होता है, यही सोचिए कि कोई आस पास होता है। ये वंजली आ रही है आपके लिए फिरदौस से।

0: दूर रह कर भी जो समाया है मेरी रूह में, दूर रह कर भी जो समाया है मेरी रूह में, पास वालों पर वो शख्स कितना असर रखता है।
1: जी, बहुत खूबसूरत नगमा आपने सुना, और इसी के लिए हमें जो खान साहब आपके टेलीफोन करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आप शौक से सुन रहे हैं और थोड़ा सा मायूसी का इजहार आपने किया कि मैसेज कोई बात नहीं, मैसेज हम तक पहुंचना था, आपने फ़ोन किया, मैसेज पहुंच गया, और आपने कहा है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और ख़ास तौर पर मौसीकी आप प्रोग्राम में बहुत पसंद कर रहे हैं, और जो प्रोग्राम का जो हमारा तंज़ो मज़ाक का सिलसिला है आप कह रहे थे द ग्रेट प्रोग्राम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: और इब्रार साहब जो बैडमिंटन प्लेयर हैं वो भी अपने तमाम दोस्तों को सलाम अर्ज करते हैं और ईद मुबारक पेश करते हैं।
1: वालेकुम अस्सलाम, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। एक भैंस
0: जी,
1: भैंस घबराई हुई जंगल में भागी जा रही थी।
0: अच्छा
1: जी, एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ बहन, कहाँ भागे जा रही हो? भैंस, जंगल में पुलिस हाथी पकड़ने आई है।
0: अच्छा
1: चूहा, पर तुम क्यों भाग रही हो, तुम तो हाथी नहीं हो।
0: जी जी।
1: भैंस, ये पाकिस्तान है मियां, चूहे पकड़े गए तो 20 साल तक अदालत में ये साबित करने में लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। और ये सुनकर चूहा भी भैंस के साथ भागने लगा।
0: ऐसा लोग उसको पकड़ का कहेंगे हाथी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत खूब। समय बात हम मोहब्बत की जब करते हैं तो मोहब्बत की मुकम्मल तशरीह जो है ना, किसी ने इस तरह से बयान की है कि मोहब्बत का मीम जो है, मीम भी कुछ अजब निराला है, मिल जाए तो मियां, ना मिले तो मामू। मोहब्बत का हे भी किसी से कुछ कम नहीं, मिल जाए तो हकीकत, ना मिले तो हसरत। मोहम्मद मोहब्बत के बे की तो बात ही अलग है, मिल जाए तो बीवी, ना मिले तो बाजी।
0: बाजी ठीक है।
1: मोहब्बत का ते भी बड़ा लाजवाब है, मिल जाए तो तकदीर, ना मिले तो आगे आप खुद ही समझ लाएं क्या हो सकता है। जी, ये थी मोहब्बत की किसी ने तशरीह की। जी हाँ बिल्कुल। तो बहरहाल मोहब्बत जो है ये बिल्कुल होती है, मोहब्बत जरूरी नहीं कि आपको किसको किसके साथ है, मोहब्बत आपके माँ बाप के साथ भी हो सकती है, मोहब्बत आपको अपने बच्चों के साथ भी हो सकती है, मोहब्बत आपको अपने प्यारे बहन भाइयों और अजीजों का बहुत होते हैं। तो मोहब्बत जो है वो इसका गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए कि बस एक मोहब्बत को आप सिर्फ एक ही नज़र से आप सोचें।
0: और परिंदों के साथ भी काफ़ी जो है ना, अपने लोगों ने परिंदे रखे हुए हैं उनके साथ भी उनको लगाव होता है, मोहब्बत होती है।
1: जी जी।
0: क्या मसूदराना साहब तैयार हैं कुछ गाने के लिए? जी, क्या हाल है आपका?
1: जी जी बिल्कुल, अगर आपके पास लाइंड अप है तो जरूर सुनवाइए।
0: कहते हैं कि मेरा ख्याल हो तुम मेरी आरज़ू,

0: क्या कहना मसूद रौना साहब की आवाज़ का, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी आवाज़ थी। उसके बाद अखलाक अहमद साहब भी आए हैं। आपने फिर जी जिक्र किया है मियां बीवी का, मियां बीवी का ताल्लुक ऐसा होना चाहिए जैसे हाथ और आंख का होता है।
1: बिल्कुल।
0: जब हाथ पे चोट लगती है तो आंख रो देती है, और जब आंख रोती है तो हाथ उसके आंसू पोंछता है।
1: बिल्कुल सही आपने फरमाया। सामिन, एक मरतबा फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जो नाराज हैं उनको भी, जो दूर हैं उनको भी, जो बात नहीं करना चाहते उनको भी, जो ताल्लुक नहीं रखना चाहते उनको भी, सबको दिली ईद मुबारक। खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम आमीन। सामिन, साथ हमारा निभाते रहिएगा। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं इस वक्त जो हैं मोहम्मद यासीन और इफ़त हमीद के साथ। दिल गम से फटा जा रहा है कि मैं इस बार भी अपने औलाद को ईद की शॉपिंग नहीं करवा सकी। दुख इस बात का नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे तो हैं, मगर दुख इस बात का है कि मेरी कोई औलाद नहीं है। मजीद सितम ये कि अभी मेरी शादी भी नहीं हुई। बहुत दूर की सोची आपने।
0: जी
1: चलें अच्छा सा नगमा सुनवाइए, और टेलीफोन कॉल्स भी आपकी आ रही हैं और हम टेलीफोन कॉल्स लेते हैं जो भी आप कोशिश कर रहे हैं, तो इस नगमे पे हम आपकी साथ बात करते हैं।

0: यूं तो हम अपने आप में गुम थे, पर सच तो ये है कि वहां भी तुम थे।
1: You are listening to Suhana Safar with Iffat Hamid and Mohammed Yasin. जी सामिन, साथ से निभाते रहिएगा। आप सुहाना सफ़र सुन रहे हैं इस वक्त मोहम्मद यासीन और इफ़त हमीद के साथ लिंक FM शेफील्ड से। टेलीफोन लाइंस खुली हैं 0114-261-8181। और आपको दोबारा रिमाइंड करवा दें कि आज व्हाट्सएप और फेसबुक जो है ना स्ट्रीम काम नहीं कर रही। तारिक महमूद साहब, आपका टेलीफोन आपने हमें किया, आपके टेलीफोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई हम आपको बहुत मिस कर रहे थे पिछले कुछ प्रोग्राम्स में, हमारी आपसे जो है ना वो बातचीत नहीं हुई। और आपने सबको ईद मुबारक कहा है और खैर मुबारक तारिक महमूद साहब, उम्मीद है कि आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी और दिली दुआएँ हमारी आपके साथ हैं। सामिन, अगर आप भी कुछ कहना कुछ चाहते हैं तो तशरीफ लाइए 0114-261-8181 पर। कभी रुक गए कभी चल दिए, कभी रुक गए कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम से, कभी जुल्फ पर कभी चश्म पर, कभी तेरे हसीन वजूद पर, जो पसंद थे मेरी किताब में वो शेर सारे बिखर गए। जी सामिन, प्रोग्राम के दौरान जो है ये कुछ और अच्छी बातें जो है ना हम आपकी खिदमत में करेंगे। ज़रा मैं कह रही थी सीरियस जरा बातें जो है ना ये थोड़ा सा लेटर ऑन करेंगे, पहले ज़रा आपका हल्की फुल्की बातें होनी चाहिए। ज़रा जो है आप ज़ाहिर ईद की कुर्बानी की वजह से भी काफ़ी स्ट्रेस, घर में जो है हमारी बहनें भी हैं काम करके थक गई होंगी, अगर आप आराम से बैठी हैं तो प्रोग्राम को आप एंजॉय कीजिए।
0: एक और मशवरा है उनके लिए,
1: जी जी जी
0: मियाँ साहब के लिए, कि भाई ये जो चंद दिन 4-5 दिन है बहनों के लिए माओ के लिए बड़े स्ट्रेसफुल थे, ये ना खाना बनाना, मुफ्त किस्म के डिशेज बनाना।
1: जी
0: आप ऐसा कीजिए कि उन सबको अब हॉलीडेज पर ले जाइए एक हफ्ते के लिए।
1: आई विश के कभी ऐसा हो सकता,
0: बैलेंस होना चाहिए,
1: बैलेंस होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये आप घर वालों को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आप उनको हॉलीडेज पर ले जाएं। जी जी, पप्पू नया नया डॉक्टर बना।
0: अच्छा,
1: ठीक है। हाँ जी, पप्पू मियाँ नए नए डॉक्टर बने, उन्होंने पहला ऑपरेशन किया। जी ये सामने तंजो मिजाक की बात है, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि इसमें हमारा जी ये नहीं है कि किसी को हम कोई तनकीद का निशाना नहीं बना रहे, जो मिजा है यहाँ तो ये मुख्तलिफ पेशों पे होता है, ठीक है, डॉक्टर्स पे हैं, वकीलों पे हैं, मुख्तलिफ लोगों पे जो हैं ये लतीफे हैं, मजाक है, किसी मियाँ है, बीवी है, सब पे होते हैं।
0: तो बारह दुनिया वसी है और कोई पप्पू नाम का डॉक्टर हो सुन रहा हो तो उसके फीलिंग क्या होगी?
1: हाँ, नहीं मैं तो वही वाली बात होगी ना, वो किन्ने किन्ने जाना बिल्लो द कार, वो बिल्लो को लेके भी कितना बड़ा मसला
0: बन गया।
1: बिल्कुल। अच्छा। तो इसलिए बाहर उन्होंने पहला ऑपरेशन किया।
0: अच्छा।
1: ऑपरेशन करके बाहर आए तो कहते हैं कि या अल्लाह पहला तोहफा भेजा है कबूल फरमा। जी बहरहाल सामिन, साथ हमारा निभाते रहिएगा। इसी तरह अब वही मैंने कहा ना कि औरतों पर मर्दों पर किसी भी, तो अब बात होनी है ना, अब जाहिर है अब इनके बगैर तो बातचीत मुमकिन नहीं है। कई दिन से जोड़ों का दर्द महसूस कर रही थी।
0: अच्छा।
1: कई दिन से जोड़ों का दर्द महसूस कर रही थी। हाँ। कल जाके दो जोड़े लाई, तब जाके जोड़ों के दर्द को आराम मिला। वाह खूब, कोई दुआ सर नहीं कर रही थी। वाह वाह क्या खूब है, जोड़े तो फिर जोड़े ही है। जी समय अब अच्छा सा नगमा आपकी फिल्म पेश करते हैं।
0: आ रही है आप जी माशाल्लाह, समय के टेलीफोन का जब प्ले करें कोई नगमा तो आप उस दौरान जो है ना मैं सुनिएगा।
1: ठीक है, अभी जैसे नगमा लगता है आप हमें दोबारा से कॉल कर सकते हैं। जी
0: ये नगमा मैं सुना रहा हूँ सुभाष गाही की एक फिल्म का, यानी कि सुभाष गाही एक जो थे ना वो क्रिएटिव माइंडर थे।
1: जी साथ निभाते रहिएगा सामिन, आप सुन रहे हैं सुहाना सफ़र इफ़त हमीद और मोहम्मद यासीन के साथ।
0: जी हाँ, अब देख रहा हूँ कौन सा लग गया, आ गया जी आ गया, लगता है जवाब साहब ने बड़ा मुश्किल सिस्टम कर दिया हमारे लिए इंडिया।

0: सुबह गाई जी हाँ इसके एक फिल्म था नगमा था। अब शमैन इफ़त जी
1: जी जी
0: हमारे साथ आप पहुँचे हैं
1: एक अहम शख्सियत।
0: जी हाँ अहम शख्सियत, इनका ताल्लुक जो है ना वो यहाँ शेफील्ड से है और आर्ट और कल्चर के ये चेयरमैन रहे हैं यहाँ शेफील्ड में यॉर्कशायर में और उसके अब ये प्रमोटर हैं पूरी आर्ट और कल्चर के जो हमारे जितने भी ग्रुप्स आते हैं पाकिस्तान से सिंगर्स हुए या कि ड्रामा आर्टिस्ट हुए
1: जी।
0: ये उनको लाते हैं स्टेज पर हैं जी। हाँ तो ये तशरीफ फरमा है करामत
1: चौधरी करामत साहब। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम। सबसे पहले मेरी तरफ से आपके सुनने वालों को मेरी तरफ से आदाब अर्ज और अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी। खुशामदीद कहते हैं आपको इस प्रोग्राम में और सुहाना सफ़र में आपका ये जो हमारे साथ आज सफ़र रहेगा बहुत
2: सफर ये भी यादों का तनखा गुजर गया होता ना जाने किस कदम दम ठहर गया होता मिलता अगर आपकी चाहत का सहारा तो मैं टूट के बिखर गया होता।
1: वाह वाह वाह वाह
0: ना जाने किस गली में शाम हो जाती
1: जी। बिल्कुल जी ठीक है जी। तो आप
0: इनसे पूछें कब से ये आर्ट और कल्चर के साथ
1: प्रमोट कर रहे हैं?
2: ये बचपन से मैंने अच्छा। कॉलेज वहाँ से मैंने शुरू किया था
1: अच्छा।
2: बहुत शौक थी कि अपने पाकिस्तान के जो प्रमोट करूँ अपने कल्चर को और जो आर्टिस्ट हमारे आते हैं। इससे पहले मैंने कुछ तीन शो इंजन भी किए थे बॉलीवुड के मैनचेस्टर एरिना में शाहरुख खान ऋतिक रोशन करीना कपूर अक्षय कुमार अर्जुन रामपाल काजल वगैरह। फिर मैंने अभी ख़त्म कर दिए अभी पाकिस्तानी में पाकिस्तान के जितने भी आर्टिस्ट आते हैं उनको प्रमोट करता हूँ
1: जी। बिल्कुल बहुत बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आपने किए हैं मैं बिल्कुल विटनेस हूँ और मैंने खुद वो सारे प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं। बहुत आप नगीने ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं पाकिस्तान से यहाँ पर।
0: माजी में जाएं तो अखलाक अहमद साहब की इन्हें प्रोग्राम करवाए थे
1: बिल्कुल जी जी
0: और अजीजी जो है ना वो पाकिस्तान के
2: घर में ठहरे थे एक दिन
1: अच्छा
2: जाने जाते अभी लेट हो गया तो फिर कुछ हो सकता है तो मैंने कहा हाँ यासीन को मैंने फ़ोन किया तो कहता ठीक है मेरे घर खाली अभी आ जाए। तो सारे पूरा सोहेल अहमद भी और इतना ग्रेट इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा इस जैसा बंदे को। जितनी भी लड़कियां थी ना आर्टिस्ट जो थी
1: जी, जी,
2: वो सारी ऊपर सो रही थी
1: अच्छा
2: और ये नीचे फ्लोर पे सो रहा था। जिस बंदा जो लेकर आया था पाकिस्तान में वो भी एक्टर था
0: जुबैर
2: मुझे कहता है कि चौधरी करामत साहब पंजाबी च कहता इधर आओ कहता है देखो कितना अजीब इंसान है कि खुद नीचे सुता हुआ फ्लोर थे
1: और रिस्पेक्ट है रिस्पेक्ट है बिल्कुल जी। ये तो इसमें कोई शक नहीं है
0: अजीजी जी और अनवर अली बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट इन्होंने मंगवाए हैं यहां
2: में काफी लोग हमारे घर में ठहरे एक बार गादी हसन एसपी जॉन तू जो नहीं
0: एसपी
1: वाह वाह वाह
2: मोइन अख्तर भी शेफील्ड में
1: अच्छा जी। फिर आपने बड़े बड़े लोगों को जो है आपने जो है ना यह सब मेहमान नवाजी का जो है ना आपको ये एजाज हासिल है सब की मेहमान नवाजी का वो तो मुझे बिल्कुल जैस बिल्कुल पता है कि एक बहुत बड़ा किसी जमाने में क्रिकेट का इन्होंने शो किया था करामत
2: पूरी जी
1: बिल्कुल। तो उसमें जो पूरी क्रिकेट टीम को बुलाकर जो आपने शेफील्ड टाउन हॉल में जो आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था पूरी पूरी क्रिकेट टीम
2: वर्ल्ड कप हुआ था यूके में जो इंग्लैंड में तो पाकिस्तान ने सारे राउंड जीते थे लास्ट जो मैच था वो एडिंगली में था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था ना। तो नेक्स्ट डे पूरी कोच आई थी हमारी आप भी थी
1: मैं कहा मुझे याद है आपके साथ मैंने प्रोग्राम जो है ना वो कंपेयरिंग की थी
0: बिल्कुल और नूर जहां की बेटी जिले हुमा
1: जी हाँ वो है हदीका के आनी आई
0: सज्जाद अली
1: जी बिल्कुल बहुत मेरे ख्याल में बहुत आपने लंबी लिस्ट है जी बहुत लंबी लिस्ट है अच्छा जी।
0: इनकी जिंदगी की भी लिस्ट भी बहुत लंबी है जितने भी आप इनको जो इन्होंने चौके छक्के मारे हैं ना वो सभी
2: यानी कि मैं क्रिकेट भी खेलता रहा
1: अच्छा माशाल्लाह
2: माशाल्लाह बहुत एथलीट था
1: वो बहुत गुड। ये तो फिर वो कहते हैं ना आपके वो छुपे हुए जो आपकी स्किल्स हैं वो अब सामने आ रही हैं।
2: विकेट कीपर होते थे बॉल छोड़ देते थे
0: जानबूझकर इनका जो है ये बॉल करवाते थे छोड़ देते थे बाहर चौका लग जाए
2: अगर मैं फुल स्पीड से बॉल करूंगा ना तब नहीं खेलते
1: ठीक है
0: आंखें बंद कर लेते थे कि बैट आगे रख दिया आंखें बंद कर दी
1: अच्छा ठीक है चले वो भी अपना अंदाज
0: था। ये प्रोग्राम के बारे में एक दो बार ये कैंसिल भी हुआ ये
2: नियर टाइम नियर का पोस्टपोन कहते हैं क्योंकि पहले जब हुआ था वो इस वजह से हुआ था कि जो वॉर शुरू हो गई थी ना अमेरिका की और ईरान की
0: ईरान जी
2: तो برٹش امبیسی سے اور جو امریکن امبیسی بند ہو گئی تھی,
1: بالکل
2: جی جی جی جی سیٹ ہوتی ہے نا, اس لیے بند کر دی تھی اس وقت, رک گئے. سیکنڈ ٹائم پھر یہ جب آ رہے تھے تو آج کل ایپ کے ذریعے نا جن کو ویزا ملتا ہے جو آرٹسٹ آتے ہیں انہوں نے میسج کیا کہ آپ کے بھیج دیا ہم نے, جب انہوں نے کھولا نا تو کھولنے میں میرے خیال میں کوئی پرابلم انہوں نے کر دیا, کوئی رونگ بٹن دبا دیا یا کیا ہو گیا. تو پھر یہ جب ایئرپورٹ پر گئے تو وہاں پر انہوں نے جب اسکین کیا نا تو کہتے ہیں یہ تو تمہارا وہ بلک ہو گیا ہے تو یو کانٹ ٹریول, تم جا نہیں سکتے ہو. وہ سارا دن بےچارا تائر نہیں اور پورا دن اپنا رہا ہے ایئرپورٹ میں اسلام آباد میں. تو پھر وہ بڑی پرابلم ہوگی, کوشش تو بہت کی کہ شاید وہ کر دے,
1: چلیں وہی بس کہتے ہیں نا کہ ہر بات میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مسئلے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اب ان کا اب آنا ان کے لیے اللہ کرے کہ چلو ٹھیک ہو آپ کا. تو اچھا جی, تو اب یہ کب کروا رہے ہیں شو جو, اور اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں. ہاں جی,
0: اس کا یہ جو نیئر کا
2: ٹائر
0: جی ہاں, خالی نیئر ہے یا تائر جی جی, یہ انہوں نے ان کا ایک مشہور یہ گانا ہے نا کہ ڈھولا.
1: اچھا پہلے تو ذرا میں دیکھیں نا, بہت سے ایسے لوگ ہوں گے
0: جی
1: جن کو طاہر نیئر کا نہیں پتا کرامت, ذرا آپ ان کو پہلے انٹروڈیوس کروائیں یہ کون ہے اور کیا کرتے ہیں.
2: ہمارے پنجابی فوک سنگر, اس میں جس طرح عطا اللہ خانی صاحب ہل بھی ہیں
1: جی,
2: نعیم ازہر بھی ہیں اور یہ طاہر نیئر ہیں, یہ تینوں فوک سنگر ہیں پاکستان کی اور آج کل یہ بھی بہت مشہور ہیں, ان کے گانے بہت چلتے ہیں آج کل. یہ پیچھے مڑ وے ڈولا تیری یاد آئی,
1: اچھا
2: یہ ان کا گانا.
1: ذرا آپ تھوڑا سا یاسین آپ ہمارے سننے والوں کو لسنرز کو ذرا سنوائیں تاکہ ذرا پتہ چلے کہ اچھا یہ آواز جو ہے وہ طاہر نیئر کی آواز ہے اور یہ یہاں پر آ رہے ہیں. بعض اوقات آپ کو نہیں ہوتا لیکن آپ کو بچوں کو یہاں پر میوزک کا پتہ ہے کہ یہ بہت اچھا میوزک ہے, کس نے گایا ہے سم ٹائمز نہیں ان کو ہوتا, تو آپ ذرا سنوائیے آپ ان کو تاکہ پتہ چلے کہ یہی طاہر نیئر ہے جو یہاں پر تشریف لا رہے ہیں.

0: ताहिर नेयर आ रहे हैं इस ट्यूसडे के दिन।
1: जी अब बताइए आप जी।
2: 2 जून को, यानी कि 2 दिन रहते हैं, आज का और कल, और ट्यूसडे को शो है ये।
1: अच्छा।
2: और शो का नाम भी है कि ईद सेलिब्रेशन शो है।
0: ठीक है
1: जी।
2: और ताहिर नेयर के साथ हमारी एक पाकिस्तान का बहुत वायरल गाना हुआ था अभी रिसेंटली, नक द कोका।
1: ओ जी, तो बिल्कुल।
2: वो भी लड़की आ रही है जो सिंगर है हमारी सारा अल्ताफ।
1: अच्छा।
2: उसको भी काफी लोग जानते हैं,
1: नक द कोका। ठीक है।
2: उसके अलावा ताहिर नैयर के जो बेटे हैं वो भी साथ आ रहे हैं। फिर हमारी एक और आर्टिस्ट आ रही है फर्रा खान, वो नसीबो लाल और नूर जान को बहुत अच्छा गाती है।
1: अच्छा।
2: उनकी आवाज भी मिलती है उनसे।
1: जी जी।
2: तो ये शो हमारा ट्यूजडे को हो रहा है 2 जून को।
1: 2 जून कहाँ पर हो रहा है? जी,
2: अरूज।
1: अच्छा, अरूज में। अच्छा,
2: बंटिंग जो सूट है ना शफील का, उसमें लोग अरूज वेडिंग हॉल भी कहते हैं।
1: बिल्कुल जी जी।
2: तो उसमें हो रहा है शफील S47WZ डिस्को कोड।
0: अच्छा, तो टिकट्स वगैरह की
2: पूरा फैमिली शो है ये।
0: हां,
2: और दूसरी बात है इफ्त साहिबा जी के कुछ वक्त पहले हमारे लोग शफील के अपनी फैमिली को लेके जाते थे दूसरे शहरों में, मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड में शो देखने के लिए।
1: जी जी, बिल्कुल।
2: और ये आजाद मुझे असल है, आप सबको है जो आप शफील के लोग रहने वाले हैं। कभी बाहर से लोग बहुत आते हैं, बर्मिंघम, नॉटिंघम, डर्बी शहर, फैमिलियां लेकर लोग आते हैं। शफील का माहौल बहुत अच्छा,
1: अच्छा
2: है। हमारे जितने भी शो होते हैं फैमिली शो होते हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ अपनी कम्युनिटी को कि पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट आते हैं उनको सपोर्ट करनी चाहिए। आप अपनी फैमिली को लेकर आए, इंशाल्लाह यहाँ का माहौल भी ऐसे ही होता है बहुत अच्छा।
0: ज़ाहिर है हौसला अफजाई करनी चाहिए।
2: टिकट भी रीजनेबल है, यानी कि हमारा जो स्टैंडर्ड टिकट होता है वो 25 pounds है।
1: अच्छा।
2: दूसरी जगह पर 35
1: है,
2: दूसरे शहरों में भी
1: 3-4 शो
2: के होंगे, लेकिन शफील में मैंने 25 pounds रखा है हमेशा। लोगों की यही करता हूँ कि चलो हमारी
1: सही है, ताकि वो रीजनेबल जो है ना वो टिकट प्राइस हो, ताकि सब लोग आए और इन्जॉय कर सके। तो समय जैसा कि करामत साहब ने कहा कि 2 जून ट्यूसडे को, ये टाइम क्या रखा है आपने?
2: शाम को 7:30 बजे शुरू होगा।
1: अच्छा,
2: तो 7 बजे डोर्स ओपन होगी।
1: जी,
2: तकरीबन 7:45 या 7 बजे डोर्स ओपन होगी। 7:30 बजे आर्टिस्ट काफी ज्यादा है हमारे पास ना।
1: जी बिल्कुल।
2: मेन आर्टिस्ट होंगे वो ताहिर नैयर होंगे जो लास्ट में,
1: जो लास्ट पे आते हैं। ठीक है जी। तो समय शेफील्ड में जो आने वाला शो है, ताहिर नैयर और उनका जो पूरे साथ उनके साथी आ रहे हैं, उनके साथ सारा अल्ताफ हैं, साहिल नैयर जो उनके बेटे हैं, इसके अलावा जो फराह खान जो है ना ये भी बहुत अच्छी सिंगर हैं, जिनके साथ तशरीफ़ ला रहे हैं। 2 जून विच इज़ ट्यूसडे को है शेफील्ड में। 7 बजे डोर्स ओपन होंगे, तो आप और अपनी फैमिली के साथ आप आइए। और आपसे यही दरख्वास्त है कि ये पाकिस्तान का ये कल्चर है, और इसको अगर हम प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो इसलिए ये आप इसको, आप करामत साहब का जो है ना ये अगर इतनी एफर्ट कर रहे हैं कि उनको यहाँ पर लाने में, तो अब ये हमारा रोल है कि हम इस शो को किस तरह से सक्सेसफुल करते हैं। तो आप ज़रूर तशरीफ लाएं और इस प्रोग्राम को प्रमोट करें। बहुत बहुत
0: शुक्रिया चौधरी साहब जो आप तशरीफ लाए और इस शो के
2: बारे में। बहुत शुक्रिया लिंक FM का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: और इनका
2: इनविटेशन भी है कि आप जरूर आएं शो देखने के लिए।
0: पैसे देकर अंदर जाएं जी, मुफ्त में नहीं।
1: अच्छा, इंशाल्लाह नहीं, मैं तो ऑलवेज आपका शो जो है मैंने कभी मिस नहीं किया।
2: लेडीज को लेके भी आती
1: हूं मैं, मैंने कभी मिस नहीं किया करामत का शो।
2: बताती है कि बाहर निकलो, शो देखो।
0: आपके लिए
2: मौसम भी बहुत अच्छा है,
0: आपके लिए मुफ्त नहीं है, हमारे मर्दों के लिए मुफ्त है।
1: देखिए, जो भी मुफ्त हो ना हो, लेकिन ये है कि हमें जो है ना ये प्रमोट करना है इस प्रोग्राम को, और मैंने हमेशा से किया और इंशाल्लाह अब भी मैं करूँगा। और मेरी अपनी बहनों से दरख्वास्त है कि वो भी तशरीफ लाएं। अब तो सर्दी का भी बहाना नहीं है कि बहुत ठंड है, घर से निकलेंगे कैसे।
2: तो मुझे भी जितने मेरे शो होते हैं ना, लोग मुझे भी कहते हैं कुछ गुनगुनाओ
1: शो में। जी बिल्कुल, अब तो आप भी पॉपुलर होते जा रहे हैं। अब लाइव है तो सुन लें कुछ, नहीं इनसे कुछ सुन लें, ये लाइव है। हां, इनसे सुने,
0: इनको बोल कहा कि फेंके एक शेर हमारे सामने।
1: बिल्कुल जी जी जी,
2: ये सॉन्ग तो साइबर सॉन्ग का कह रही है कि सॉन्ग,
1: हाँ वो भी शेर भी सुना रहे कि थोड़ा सा नगमा भी सुना।
0: नहीं, नगमा शेर सुनाए, नगमा तो शायद तबला वगैरह यहाँ मौजूद ना हो।
2: मोहब्बत के अक्सर दिलों को तोड़ देते हैं, आपसे अक्सर मोहब्बत के दिलों को तोड़ देते हैं। मंजिल की बात करते हो चौधरी यासीन, तो रास्ते को छोड़ देते हैं।
1: वाह वाह वाह,
2: वो बे

0: बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। अब तो इस राह से वो शख्स गुजरता भी नहीं, अब तो इस राह से वो शख्स गुजरता भी नहीं, अब किस उम्मीद पे दरवाजे से झांके कोई। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी करामत साहब आपका, और रियली अब इतना आपने सिलसिला शुरू किया, दिल तो चाहता है कि आप ही को अब हम सुने, अपना प्रोग्राम यहीं पे स्टॉप कर दें, और इंशाल्लाह पूरा ट्यूसडे को अगर आपने करामत साहब को सुनना है तो आप जरा तशरीफ लाइए आप, और इनको भी सुने और साथ साथ इनके मेहमानों को भी आप सुने।
1: ये तायर नियत का जो है ना, ये कमीज़ा कालियां, ये भी मशहूर
2: जी, बहुत मशहूर है गाने।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार समेन थे ये, किसके लिए नगमा
1: जी? ये नगमा हमने शाहिदा आपके लिए पेश किया, उम्मीद है कि आपको ये नगमा पसंद आया होगा। प्रोग्राम आप बहुत शौक़ से आप सुनती हैं, हमेशा सुनती हैं और आज भी आप सुन रही होंगी, तो माजरत चाहते हैं कि आज व्हाट्सएप और का जो है सिलसिला आज नहीं है, ये स्ट्रीम हमारी काम नहीं कर रही, तो अदरवाइज़ आप मैसेज भी हमें भेजती हैं, तो उम्मीद है कि इस नगमे को आपने पसंद किया होगा। प्रोग्राम को सुनने का एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। सामिन 0114-261-8181 पर आप हमारे स्टूडियोज़ में हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप प्रोग्राम में अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं। सिरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, यासीन अब जितने भी हमारे पुराने नगमे थे उनकी शायरी कितनी ज़बरदस्त थी, कितना अच्छा लिखते थे। उर्दू जो है वो उसका तो जवाब ही नहीं था जो लिखने वाले थे। जी हाँ, जो राइटर्स थे बिल्कुल। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है कि अब हमारी आम स्पोकन लैंग्वेज में उर्दू जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। तो एक तरह से लगता है कि जैसे हम उर्दू को अलविदा कह रहे हैं, अपनी बातचीत की मैं बात कर रही हूँ। जी हाँ, सुनो ये फ़ख्र से एक राज भी हम फाश करते हैं, सुनो ये फ़ख्र से एक राज भी हम फाश करते हैं, कभी हम मुंह भी धोते थे मगर अब वॉश करते हैं, था बच्चों के लिए बोसा मगर अब किस ही करते हैं, सताती थी कुछ यादें मगर अब मिस ही करते हैं। चहल कदमी कभी करते थे और अब वॉक करते हैं, कभी करते थे हम बातें मगर अब टॉक करते हैं। कभी जो अम्मी अब्बू थे वही अब मम्मा पापा हैं, दुआएं जो कभी देते थे वो बुड्ढे सयापा हैं, कभी जो था गुसल खाना बना वो बाथरूम आखिर, बड़ा जो अब एक और दर्जा बना वो वॉशरूम आखिर, कभी तो दर्द होता था मगर अब पेन होता है, पढ़ाई की जगह पर अब तो नॉलेज गेन होता है, ये है अब
0: लेकिन स्ट्रेस भी ज्यादा होती है।
1: जी बिल्कुल सही है, साथ निभाते रहिएगा सामिन।
0: अब यहाँ बैडमिंटन प्लेयर्स मुझे मिले हैं इस हफ्ते के ईद के दिन बगल गिर हुए और बड़ा मज़ा आया सभी का, उसमें से फजल मुगल साहब थे, वो जो है ना प्रोग्राम सुनते हैं हमेशा हमारा और बहुत ही तारीफ़ करते हैं बहुत ही प्यारे और खूबसूरत अल्फाज में। तो ये नगमा मेहदी हसन का जो है ना, ये रुलाने दुलाने का नहीं है, ये आपको खुश रखेगा। आप कहते हैं कि तुझे जाने वफा दिल में बसाने की तमन्ना है, मेहदी हसन साहब जॉलीवुड में है।

0: कभी लफ्ज़ भूल जाऊं कभी बात भूल जाऊं, कभी लफ्ज़ भूल जाऊं कभी बात भूल जाऊं, तुझे इस कदर चाहूं कि अपनी ज़ात भूल जाऊं, उठकर कभी जो तेरे पास से चल दूं, जाते हुए खुद को तेरे पास भूल जाऊं।
1: बहुत खूब जी। अक्सर होता है कि हम ये सोचते हैं कि इंसान की अब एज हो गई है
0: जी,
1: ये थोड़ा सा अब उम्र में ज्यादा हो गया है, ये अब संजीदा हो जाएगा या संजीदा हो गया, यही है ना आमतौर पर हमारा कॉन्सेप्ट, ये खासतौर पर रिटायरमेंट के बाद आप जो अपनी जवानी में यंग एज में जो शरारती होते हैं रिटायरमेंट के बाद, ये बिल्कुल। लेकिन कौन कहता है कि रिटायर होने वाले शरारती नहीं होते? यस,
0: कौन कहता है?
1: अब मैं आपको बताती हूँ, ये सुने अब आप जरा, एक तरह से एक जोक ही सही, ठीक है। रिटायर्ड दोस्तों के एक व्हाट्सएप ग्रुप ने दोपहर के खाने पर मिलने का फैसला किया। उनमें से तमाम 15 दोस्त मिले और उन्होंने अच्छा खाना खाया, अच्छे मशरूबात ड्रिंक्स पिए और मीठा वगैरह खाया, फिर बिल आया। ये होटल की बात हो रही है। उनमें से सभी 15 दोस्त बिल अदा करने के लिए और बिल लेने के लिए काउंटर पर पहुंच गए। एक ऐसा मंजर था जिसमें सब दोस्त बिल लेने के लिए लड़ रहे थे। ओके, होटल के मैनेजर ने ये देखा और बिल अदा करने के लिए हर एक की मोहब्बत और नेक नीति को बड़ा उसने अप्रिशिएट किया। आखिरकार उन 15 में से एक दोस्त ने कहा, बिल तो अदा करना है
0: जी,
1: और हर कोई इसे अदा करना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि दूसरा इसे अदा पे करे, इसलिए हम एक रेस का एहतमाम करेंगे, सबको होटल के अहाते का बाहर ठीक है ना चक्कर लगाना चाहिए और जो भी पहले आएगा काउंटर पर वो बिल पे कर देगा।
0: ठीक है
1: अच्छा। इतने मुहज़ब और फ़ियास दोस्तों के ग्रुप की बिल अदा करने की ख्वाहिश देकर मैनेजर तो बड़ा ही हैरान रह गया। ठीक है,
0: होना चाहिए था।
1: अच्छा, और वो फिर उसके बाद उसने क्या किया कि मैनेजर ने कहा कि वो सीटी बजा सकता है, ठीक है, और उसने कहा कि ठीक है मैं सीटी बजाऊंगा और आप लोग होटल के इर्द गिर्द भाग सकते हैं, जो भी पहले आएगा वो बिल अदा कर देगा। आज तीसरा दिन है और अभी तक मैनेजर सिटी पकड़े
0: कोई भी वापस नहीं,
1: कोई वापस नहीं आया। ये रिटायर्ड लोगों का मतलब है कि एक फंड है उनको मिला और ये है। ठीक है, तो कौन कहता है कि रिटायरमेंट के बाद इंसान शरारती नहीं रहते?
0: बिल्कुल
1: जी, साथ निभाते रहिएगा।
0: अब सुनाएं समय आपको, फूल आस्था फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। ये मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में नगमा है, मुमताज़ राजेश खन्ना, और फरमाया गया था शशि कपूर भी साथ हैं इसमें। इंडिया
2: कहा आपका ये बजा ही सही के हम

0: खुद घायल होते हैं फूल आहिस्ता फेंको।
1: दिल के जख्म कभी नहीं भरते, दिल के जख्म कभी नहीं भरते, वक्त सिर्फ यादों को पुराना करता है, फूल आहिस्ता फेंको।
2: वो ना आएगा हमें मालूम था उस शाम भी, वो ना आएगा हमें मालूम था उस शाम भी, इंतजार इसका मगर कुछ सोच कर करते रहे। सामिन, ज़ाहिर है अब हमें भी पता है कि आज आप यहाँ पर हमारे पास नहीं आएंगे, लेकिन पता नहीं ना जाने क्यों फिर भी लगता है कि जैसे अभी आपके मैसेजेस आएंगे, सब करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे ये सिस्टम जो है ना ये ठीक हो जाएगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके मैसेजेस भी पढ़ेंगे और फेसबुक पर भी जो है ना आप हमें देख सकेंगे। कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही थी, ठीक है, ये तंजो मिजा के हवाले से, जैसे कि मैंने कहा ये प्रोग्राम है हमारी भी क्या जिंदगी है
1: जी।
2: पैदा हुए तो जलजला आया,
1: अच्छा।
2: प्राइमरी में गए तो सैलाब आया,
1: अच्छा।
2: मैट्रिक में गए तो कोरोना आया, और मुझे लगता है कि शादी का वक्त आएगा तो कहीं दजाल ही ना आ जाए। बिल्कुल यार। बहुत खूब,
1: वक्त आपके साथ बहुत अच्छा गुजरा है समीन।
2: बिल्कुल जी हाँ।
1: तो जाते जाते क्या कहेंगे, एक नगमा
2: है। अच्छा सा नगमा जिससे हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम कर सकें यासीन, और नगमा वो पूरा लग सके, ये
1: अच्छा,
2: एक शर्त होगी।
1: अच्छा कोशिश यही होगी। ये माना मेरी जा मोहब्बत एक सजा है, मगर इसमें मजा इतना किस लिए है। सुना दीजिए मोहम्मद रफी की आवाज में,
2: जी जी चलें,
1: नवीन निश्चल और प्रिया की ये फिल्म थी। इसके साथ हम आपसे इजाजत
2: चाहेंगे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला आइंदा हफ्ते फिर आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान
1: हम सबका, जहां भी रहें प्यार मोहब्बत से रहें समय।

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक रशीद।
1: मैं और रणदीप चौधरी।
2: मैं असलम भुट्टा।
3: मैं जी हुसैन कपूर शफील से।
4: मेरा नाम शफाक हुसैन क्यानी है।
5: मेरा नाम अहमद असगर है।
6: मैं अरशद खान शफील से हूं।
7: मेरा नाम अंजुम अफ्ताब है।
8: मेरा नाम इमराना है। कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre. Link FM.
16: Link FM.
17: मिनहाज उल कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीम शान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है. 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बादज नमाज जोहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में. इस अजीम शान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी. फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से कुलूबो अजहान को मुनव्वर कीजिए. शुक्रिया.
18: If you would like to promote your business on Link FM, our team can help you. Contact us on 0114 261 8182 or email us on info@linkfm.org.

0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन दिल से आपके साथ।
1: लिंक एफएम शेफील्ड।

0: Sheffield's Link FM.
1: मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीम शान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बाद नमाज जोहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीम शान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से कुलूब व अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: लाइफ इज अ गेम, लव इज द नेम।
1: मैं हूं अली अब्बास और आप सुन रहे हैं लिंक FM 96.7 FM।